हृदय रसका सारा विचित मधुपानाहार भयगरम शौ विभव सिन्धु सुपरसङ्गम हरनरङ्ग

0: कोई तुमसे बहुत प्यार करती है।
1: कौन मैम?
0: रिया। रिया बचपन से तुम्हें बहुत प्यार करती है, और तुम उसके प्यार को कभी समझे ही नहीं हो, हमेशा झगड़ते रहते हो। चलो आज मैं तुम दोनों का प्यार को मजबूत कर दूंगी।

0: सत्तिन अध्ययन दस चु कारण दर्यम नला प्रजा नला जनता अर्थात इसराइली कदेदा मिश्र ग्याम तेसी बाबरी ना एदा थारो हानंग पुईवन मुला नाई लानन क्रिश्चियन गदेदा मांग मुला जोसे रंग द सेवाला लाग्री नियुक्त लामुला बेनन साचो बुलवाड यांगमन नियुक्त आतामुला थेनी गदे येसु ख्रिस्ट ग्याम यांग द नियुक्त लाभ हिंदा सेवाला गे लावरी रंग द नियुक्त लाभ यांगला ग्ला आहिंदा यांगला जिम्मेवारी बिबा रंग द नम्र सोवर हिंदा येसु ख्रिस्ट गेम देन छ्यामला सम्बन्ध विकास लाभ हिंदा रोला आवाज ज्ञान बाहिन्बा थेन्दे रोसे गन्दा पिन्सुबा आज्ञा पालन लबा हिन्बा लानन पटक परमेश्वर थेम्मी गदेदा चेवारी न्यसु मुला जोला लुई लानन टुटप ताबा मुला मोसला सन्दर्भरी एन चुरङबन मुला थेरी लानन कमजोरी गदे मुबा नच्छला मोसला धर्मपुत्र मुबा थे राङलान मि गदे घेम आताना फारला दरबारी छर्ब मुबा लिचा थे याकर्गी मिश्री सिपाही देन बोमोरेब मुबा थेन दिस सेब मुबा जब थेदचु मिला हत्यारला रूपी पहिचान लजी मोसादा मिश्र ग्याम यारबरी बाध्यताजी थेलिचा थे उजार ग्लारी टिम बार विहीन मिला रूपी रङलाली बिताब लबरी थालदिजी परमेश्वरजी थेदा चु बलवार पिनमा थेला लुई लानन टुतब तबा मुबा व्यवस्था 34 अध्याय 10 थे दुई ग्याम इसरायली गदे रुई मोसा राङबा हालाई अगमबक्त खडा तबारे जोदा परमेश्वर जे मुखामुख जे मुबा मोसाला परिचय देन चुरङमा विशेष सम्बन्ध मुबा जुन इसरायली रि स्यन्दो हालाइला आरे मुबा नामी ना बेनन भन्दा नाच्छ हाजिबे अगमबक्त से परमेश्वर देन चुरङमा घनिष्ठ सम्बन्ध अनुभव लबा मुबा गन्तीला पुस्तक रि याङचु एन लोपकी मोसा पृथ्वीरी बेनन भन्द नम्र मि मुबा बरु रोसे थे मि गदेदा न्योसु मुला जो से येसु ख्रिस्ट देन घनिष्ठ सम्बन्ध विकास लमुला जो रोला आज्ञा गदे पालन लबरी इच्छुक मुला थेन्दे जो से रङला सेवा सफलतावला लागि आवश्यक एन बेनन ताम पिनबरीला परमेश्वरी भरोसा थान्मुला आमेन रङला जीवनरी परमेश्वर जी प्रशस्त आशिष दिन्छु गई प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी नेन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे राङनीला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98 6 85 53 339
1: टाइम चेक इट्स 7 PM
2: अहिले साँझको 7 बजेको छ।